0: 是比更等正午林冲比怕米及黑皮个努力黑皮在街和马街人去比和人不街和罗不过嘛
1: 还加十次个五马里冲比娘子间这么的塞的不冲清的里最近的三位怕个家让当是南部
2: 冲清的啦
3: यार सेदंग संगना जितना वार्कम देगा सिलान चित शेंखे जोंगरगने खंगन छापसन बा सिलंगवी शाचुंग चंबा सेनी सिरगन्यामो सिला न्यामसुजी जुइल